ठीकुरा तुम्हें बो दीरफा ठीक खुमना दीरफा कोने वने मेरा तुशु दाशु लगमा तो कौरा चुम लोले ठीक कौर फे छेको निगा खुद खुना दीरफा लिया कस्ते मुझे पेटाले ओबा दटा दुब्ली दी बागा उदा खुए लेबा कि फिलो मा दबा पलोबा पेटा ले कदरी माता खुरा दी दी फोदी फोजा मेघे पम पम जे फाले ओरा ले ठीक कगा पेरा दुब्ली बाफली बामू दुब्ली पेटा ले पागली फैसे एडा उमुआ दिने